मानस जन्म अमोलक पायो, दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो, दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो, जात्यो कौटी बदला कातूरी को गाक आयो, लाद्यों का निर्भिक जिबा आयो, लाभ लापन के ताई आयो, लाभ लापन के ताई, मोहन ठगावी क्यों पुर्ज पहा, मोहन ठगावी।

राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। जो तुम गिरवर तो हम मोरा। इफ यू आर द माउंटेन लॉर्ड देन आई एम द पीकॉक। जो तुम चांद तो हम पहे हैं चकोरा। इफ यू आर द मून देन आई एम द पार्ट्रिज इन लव विद इट। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। तुम स्यो तोर कवन स्यो जोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। फॉर इफ आई वर टू ब्रेक विद यू विद होम वुड आई देन जॉइन। जो तुम दीवरा तो हम बाती। जो तुम तीरथ तो हम जाती। इफ यू आर द लैम्प देन आई एम द विक। इफ यू आर द सेक्रेट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज देन आई एम द पिलग्रिम। साची प्रीत हम तुम से जोरी। तुम से अवर संग तोरी। आई एम जॉइंड इन ट्रू लव विद यू ओ लॉर्ड। आई एम जॉइंड विद यू and I have broken with all others. Jeh jeh jaun tahan teri seva. Tum so thakur aur na deva. Wherever I go, there I serve you. There is no other Lord Master than you, O Divine Lord. Tumre pajan kate jam phansa. Pagat het gaave ravidasa. Meditating, vibrating upon you, the noose of death is cut away. To attain devotional worship, Ravidas sings to you, O Master. Madhve, tum na toro, to hum nahi tore. Tum syo tor, kavan syo jore. Raag sorat, tal, choti tintal, 16 beats.

काली अपने प्रीतम के हों बिरहों जाली इस दी बंदिश पैरवी ते शिवरंजनी दे मिलाप दो रागां दे मिलाप दे विच है आप प्यार ना सरवण।

जब लवली भाग लीलार तुझे तब नौ फरते फिरते बहुत आयो कल खोर समुद्र में मूड दुखे कब हूं मिट है नीरे पछतायो तत् विचार यह मथुरा जगतारण को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ धन गुरु नानक पातशाह धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है ने कोई संकट भी आएगा ते 84 लाख जून तू बच जाएगा तो प्यार नाल सारे आखो धन गुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगतां दे सेवादार पातशाह हुक्म करो हलम करने लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बना अब गुरु की संगता की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पी दैनी गुणा वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु की संतान वास्ते आप चक्की पी आटा तैयार किया साहबान ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देव तैयार सोने थाल विच पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाया माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसे सिख नूं बुलाइए हजूर कह लगे नहीं गंगा जी असी आप ही अपने सिर पे तो संगे पातशाह जी कड़ा प्रसाद दी दे अपने पवित्र पावन शीश से रख चादर भी हुक्म मारी तुरन लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जे संतां की सेवा करनी तुसी भी ठंडे जल की गागर कर जिथे संगत नूं भुख लगी उसे प्यास तो मात गंगा जी ने सिर दे उत्ते गागर जल की रख ली हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी ना लै लो गर्मी बड़ी तुरिया जाता है अज पंजवा गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल की रखो धन गुरु रात दसो गुरु को यह जाता है सिखा ने दर्शन करो नदी तो रोज तुरती है समुद्र में मिलने वास्ते पर समुद्र कदे नहीं मिलता समुद्र कदे भी नहीं आता पर तक लो प्यारी सात सिंह नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शनों में तुर पैंदी है जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतर अद्धी रात दस गंगा जी सुना ना मेरी सिखा के प्यार वाली आवाज भावें उन्होंने प्रशादा नहीं दे ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया पर फिर भी गुरु की संगत प्यार किस तरह अरदास कर गंगा जी सुनो साहबा ने बरसित की थी माता गंगा दे कन्ना विच प्यार की आवाज आ रही है केड़ी सारी संगत रात का समय प्यार जी है ते अरदास कर रही है

बाबा ने अपने प्यार दी मिसाल कितनी सुंदर है मेरे दाता जी, दिल करे चादर की जाए कृपा न उतरे हाथ न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हमको लीजिए गुरु कुमारी गुरु दर्शन मैं गंगा जी कहता क्या एडे प्यार वाले तेरे सिख हां गंगा जी आओ चल के छेती दर्शन अगे गुरु की संगत कीर्तन करके ते हम आराम कर रही साहब जी पहुंचे जथेदार बेनती की जथेदार जी धन गुरु नानक दिया संगत वास्ते कड़ा प्रशादी देंगे जथेदार जी उठ के बैठ गए सारी संगत नु सावधान किया प्यारी सार संगत उठो कोई गुरसिख आया है गुरु ने उन्हें मन में प्रेरिया है लंगर का प्रबंध नहीं हो सकिया कड़ा प्रसाद ही दे जा रही है उठो पहले अरदास करो जो भी गुरु अरदास मिलती है ना पहला अरदास करो ये अरदास करे तो वो गुरु की बख्शिश बन जाती क्योंकि गुरु की मोहर लग जाती है कार्य प्रसादा तैयार हो अरदास करो गुरु का लंगर बन जाए क्योंकि अरदास क्यों हुई कोई कार्य है गुरुओं की कोई वस्तु मिली चंगी कार मिली है पहला गुरुओं की अच्छा तेरी चंगा कार मिले जय प्रसाद बसा सुख मंदिर किसे पे आए तो सारी संगत सावधान जथेदार ने गल च पला पाके अरदास की ऐ धन गुरु नानक पातशाह तेरा प्रेमी सिकड़ा प्रसाद दी देख लेके आया है सिख नू नाम दान बख्शी सिख नू सिखी दान बख्शी अदू कह लगे गंगा जी सेवा का फल मिल गया जी अज सी प्रेमी सिख बन गए गंगा का सेवा का फल अरदास करो दी साहबा ने अपने हथी सारी संगत को कड़ा प्रसाद एक गंगा जी हम जल भी चला साहबा के सोहने हथा जिन्हें जिन्हें प्रसाद लिया उन्हें ही जपया श्री वाह जल चुकाया जूठे भांडे कौन मांग रहा है माता गंगा जी वो हथ पवित्र जो गुरु घर की सेवा जो गुरु घर की सेवा तू मांझे हैं भाई साहब जी की सिर्फ फिर सेवा बिन हथ पैर होर मेहबल कर दी सारे जल सकिया भुख भी दूर से प्यास भी दूर हूं संगत आराम कर रही है धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी लैके पक्का ये सारी संगत गुरु पक्का करे पक्का कर दे प्यार क्या कि पर दे

छे क्लासा पढ़ जाता है तो भाई साहब जी कहते तो कौन बन जाता है, फिर भाई साहब जी कहते तो गुरमुख बन जाता है, तो भाई साहब जी कहते गुरमुख सोई जो सहज उन सहज अवस्था की प्राप्ति बार मिलियां संगत दूर नेड़े चल के आई संगत आप भी तन हो इतों के प्रबंधक भी तन होर भी कई दूजे गुरुद्वारा साहब के प्रबंधक गुरुद्वारा रामगढ़िया साहब सेवकों ने पिछले टूर के उथे भी कीर्तन द्वारा हाजरियां भरी बड़ी संगत जुड़ी अज गुरमुख माई आई एक आए उन्होंने दर्शन करके मेरा लूह नूं पेट कर नहीं तो कई थावान से साढ़े अंदर कमजोरी आ जाती कि मैं फलाने गुरुद्वारे नहीं जाना फलाने गुरुद्वारे और सिख जिसे गुरु का नाम आ जाएगा गुरु तो एक ही है कोई ना चीजा मैंने बड़ी खुशी हुई मान कुबेर करे वस्तु सानू सदा लाख गुरुद्वारे देश बना लो कोई हर्ज नहीं गुरुद्वारे बनाने माड़ी चीज नहीं है पर गुरु का जो निशाना है वो साडा एक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पूजा गुरु की संगत गुरु नानक का नाम गुरु नानक की बाणी गुरु नानक का ध्यान चार संगत जिते चार चीजा हो गई बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहते सर उथे गुरु नानक जरूर होवे अच कोई समा ज्यादा हो गया पर ज्यादा होया जाया नहीं होया क्योंकि अज इस वीक का बनाया प्रोग्राम आखिरी कीर्तन से रात का तो कोई समा चढ़ गया अज सवेरे जिसने कीर्तन का भोग पाया तो गुरु प्यारे बैठे सामने कह लगे भाई साहब पिपली साहब वाली साखी तुसी किधरे अफ्रीका नैरोबी कीती सी ते काफी रिकॉर्ड गई ते वो साखी सुनी है चित करता है फिर फिर सुना दे उन्होंने हुक्म सचे है क्योंकि बाबा जी के पिंड के नेड़े ही रहने वाले सौकिया के रहने वाले उन्होंने हुक्म से प्यार पिपली साहब वाली साखी आप जी ने सब की समा कुछ ज्यादा होया तो समा सक है आई खड़ी लक्ष्मी जो सौ बाल भी आवे तो प्यार को देख के सेवक का चित बड़ा पसंद है नहीं तो इतना चिर रहना बड़ा कठिन अरे गुरु की बख्शिश है यही रहमत है गुरु की जो साडा मन गुरु नाल जुड़िया है तो आओ अरदास करिए अनु प्रवचन दे पातशाह साढ़े से बख्शिश करो ये जड़िया मंजिला हैं गुरमुखी दे गरीबी ये सारिया पौड़िया से चढ़ की कोशिश करिए आस्ता आस्ता ये दाल ये मंदिर साढ़े भी मुक जाए तो साड़ी मनु यात्रा खत्म साधन आनंद साहब का पाठ

सावा नित खड़ी मुझो बनबाली राम राजी तार गुर हर मार जाली मेरे मंथन नाम धार है खूने जाली जन्ना ने सतगुर मेल हर मिलिया बनवाली सुख मैला सत श्री पद चार बसे देखो

शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणे खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृते सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने देव नानक तंका दास है सोई निरंजन दे एक।

ठारा केवन के नहीं निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा कि नहीं ग्रह तजवन खंड पाया कि नहीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती।

चंगा कब हो गया पाप क्या तेरी कृपा
बुरा हो गया साक्षात हम लोग माता चंगा काम हो गया जी, मैं किसा मैं पता कि जो तू बुरा हो गया जी जो रब ने कराया तो तू सियाणा है तो रब क्या जो गुरु कराम गए नितनेव नारा गुरु की जोत नितनेव ही प्रेम रात देर हो जाती फिर भी नितनेव ही अमृत वेले आने वेखण वाला कहेगा केडा प्रेमी अज भी गुरुद्वारे प्रेम आ जाए प्रेम की नितनेम तो नितनेम जरूरी नितनेम का जरूर बन रोज अंदर को लेता जाता सिमरन सत्संग जाके हाजरी करती यही प्रेम की बस अमूल्य था Thank you.

0: You are listening to SeekNet Neo, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: गौड़ी गंभीर प्रकृति का राग है। विलक दी आत्मा कृपा दी जाचना करती है, आपे दी खोज करती है। इसलिए इसे राग विच गुरु साहबान ने मन मत बुद्धि आत्मा मौत मुक्ति आदि गंभीर विषयां विच गुरबाणी उच्चारण की। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच सब तो वध बाणी इसे ही राग विच है। सुखमनी साहिब अते बावन अखरी जीवन दे सारे ही मतांत दा तत दर्शाउंदियां हन। भगत कबीर जी दी सब तो वध बाणी इसे राग विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा फरमान है, गौड़ी राग सुलखन जे खसमै चित करे, पाणे चले सतगुरु कै ऐसा सिगार करे। गौड़ी दियां 12 वनगियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच हन। जो दो शब्द हुण आप सरवण करोगे उन्हां विच गौड़ी दे जो सुर लगाए गए हन वो हन ऋषभ अते धैवत कोमल अते बाकी सारे शुद्ध स्वर। गायन समा रात दा प्रथम पहर। पहला शब्द सरवण करो भाई गुरदेव सिंह खालसा जी पासों। शब्द दे बोल हन, गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे। दूजा शब्द है प्रोफेसर हरचंद सिंह जी दा गाया होया। बोल हन, थिर कर बैसहु हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। पहला शब्द गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे।

रामकली बड़ा पुरातन अते प्रसिद्ध राग है। सवेर समय दे रागां विच इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक करुणा दा राग है, पहला मूर्छना करता है, फिर करुणा रस नाल भरपूर कर देता है। रामकली जोगियां दा प्यारा राग है। गुरु महाराज जी ने रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर के शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार लिख के इस राग दा मजमून स्पष्ट कर देता है। सिद्ध गोष्ठ रामकली सद अनंत साहब दी बाणियां इस राग विच हन। ओंकार दी बाणी विच जो दक्षिणी तर्ज ते है, प्रभु दे करता पुरख होण दा विश्वास दृढ़ करवाया है। आनंद दी प्राप्ति लई आनंद साहब विच अध्यात्मक धार्मिक अते मनोविज्ञानिक उपदेश दिते हन। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच ऋषभ अते ध्यावत कोमल दोनों मध्यम अते दोनों निषाद लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध हैं। इस राग दे आरोह विच ऋषभ स्वर का त्याग किया जाता है। इस दे गाउण दा समा दिन दा पहला पहर है। रामकली राग विच जिन्हां दो शब्दों का कीर्तन सरवण करोगे वह हैं, पहला रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर कै शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार। यह गुरु अमरदास पिता का उच्चारण किया शब्द है। इस राग विच गा रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह जी। दूजा शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई। इस गा रहे हैं बीबी गीता कौर पेंटल जी। पहला शब्द सरवण करो, रामकली राम मन वसिया ता बनिया